गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक पर। दोस्तों, आपका दोस्त आरजे अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके नॉनस्टॉप गपशप। जी हाँ दोस्तों, एक घंटे का कार्यक्रम यानी रहने वाला हूँ 11 बजे तक आपके साथ, लेकर आया हूँ कुछ नॉनस्टॉप ट्रैक्स आप लोगों के लिए। और साथ ही दोस्तों, जब भी नॉनस्टॉप गपशप में मैं आता हूँ, आपके साथ जुड़ता हूँ, आपसे रूबरू होता हूँ, तो लेकर आता हूँ एक टॉपिक, एक विषय, जहाँ पर करता हूँ मैं आप लोगों से उस विषय पर ढेर सारी बातें। तो दोस्तों, आज मैं हमारे इस कार्यक्रम में बात करने वाला हूँ स्पॉइलर के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पॉइलर होता क्या है। दोस्तों, स्पॉइलर वो है दोस्तों, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने कल इस बारे में पढ़ा तो मुझे भी समझ में आया कि एक्चुअली में स्पॉइलर होता क्या है। स्पॉइलर वो होता है कि अगर आप किसी मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं या किसी सीरीज देखने का प्लान बना रहे हैं और उसके बारे में, उस कहानी के बारे में आपको पहले से मालूम पड़ जाए कि एक्चुअली में उस कहानी में है क्या, क्या घट रहा है, क्या हो रहा है और एक्चुअली में एंडिंग क्या है, तो वो होता है स्पॉइलर। जहां पर आप बिना फिल्म देखे, बिना किसी सीरीज को देखे, आप उसकी कहानी को जान पाए। तो उस बारे में आज पूरे कार्यक्रम में करूंगा मैं बातें। और चलिए शुरू करता हूं आज का ये कार्यक्रम स्पॉइलर ट्रैक के साथ।

फिल्म भूल भुलैया 2 से दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत। याद है दोस्तों जब हम स्पॉइलर से बचने के लिए पूरी कोशिश करते थे, ये प्रवृत्ति धीरे धीरे बदल रही है। अत्यधिक सामग्री और भावनात्मक थकावट के कारण लोग अब स्पॉइलर जानने की कोशिश कर रहे हैं। वह किसी फिल्म या श्रृंखला को देखने से पहले उसके मुख्य कथानक बिंदुओं को जान लेते ताकि प्रभाव को समझ सके, समय बचा सके और मनोरंजन को अपने अनुभव पर नियंत्रण रख सके।

फिल्म जब हैरी मेट सेजल से दोस्तों आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक और 10:13 हो चुका है दोस्तों। आरजे अंकित आपके साथ शो चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर यानी 107 एफएम रेनबो पर। दोस्तों इस कार्यक्रम में रहने वाला हूं मैं 11 बजे तक आपके साथ और आज मैं बात कर रहा हूं स्पॉयलर्स के बारे में। जी हाँ, स्पॉयलर एक वही अंग्रेजी शब्द है जहां पर आपको किसी फिल्म या किसी सीरीज को देखने से पहले उसकी कहानी या उसके मुख्य बिंदु के बारे में आपको पता चल जाए। एक दर्शक है दोस्तों, वो कहते हैं कि जब 777 Charlie रिलीज हुई थी तो उन्होंने नहीं देखा क्योंकि वो पेट लवर है और वो जानते हैं कि पालतू जानवरों को खोने के कारण कैसा महसूस होता है, कैसे लोग प्रभावित हो जाते हैं। वहीं एक और दर्शक कहते हैं कि कंटेंट के विशाल परिदृश्य में समय और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं कुछ लोग और आमतौर पर एपिसोड आने का इंतजार करने के बाद फिर वो किसी शो को देखने से पहले उस कहानी की मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं ताकि उस शो के बारे में, सीरीज के बारे में पहले से पता चल जाए कि एक्चुअली में इस एपिसोड में कौन सी कहानी आने वाली है।

फिल्म ये जवानी है दीवानी से दोस्तों आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में ये ट्रैक। दोस्तों कुछ दर्शक स्पॉयलर्स इसलिए भी लेते हैं ताकि वो तय कर सकें और उनको मदद भी मिलती है कि कहानी का लहजा उनके मूड से मेल खाता है या नहीं।

फिल्म शहजादा से दोस्तों अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के लेकर आए थे ये ट्रैक। ऑनलाइन चर्चाओं में भी दोस्तों इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें उपयोगकर्ता कहते हैं कि वे आमतौर पर संक्षिप्त जानकारी ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ दर्शक कहते हैं कि अगर स्पॉइलर उनके लिए अधिक प्रेरित करता है वो शो देखने में या फिर कम प्रेरित करता है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे बचने के लिए लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं और ये देखने में हैरानी होती है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, इसका परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोगों के तरीके में व्यापक बदलाव को दर्शाता है। आज के तनावपूर्ण कंटेंट से भरे और तेज रफ्तार वाले दौर में जब लोग मनोरंजन का सहारा लेते हैं तो उनमें से ज्यादातर ये जानना चाहते हैं कि वे भावनात्मक रूप से कितना भार सहन कर सकते हैं। कभी कभी असुविधा को सहन करने की क्षमता माध्यम के साथ बदल जाती है। लंबे समय तक चलने वाले सीरीज में कई दिनों तक तो काम करने से जुड़ाव बढ़ा जाता है और वो पहले से कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो सीरीज उन्हें देखने से थका देगा, बोर कर देगा या फिर वो सीरीज वो आराम से देख पाएंगे। लेकिन फिल्मों में 3-4 घंटे तक अगर कोई फिल्म आप झेल भी नहीं पा रहे, देख भी नहीं पा रहे, तो भी आप 3-4 घंटे तक उस फिल्म को अनुभव कर सकते हैं और देख सकते हैं।

फिल्म ए दिल मुश्किल से दोस्तों आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक। दोस्तों 10:29 AM हो चुका है, आरजे अंकित आपके साथ शो चल रहा है, नॉन स्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर रहने वाला हूँ। 11 बजे तक आपके साथ सुना रहा हूँ बैक टू बैक कुछ बेहतरीन ट्रैक्स आप लोगों के लिए। और आज दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्पॉयलर्स के बारे में। जी हाँ, स्पॉयलर्स वही शब्द है दोस्तों जब आपको किसी फिल्म को देखने से पहले या किसी सीरीज को देखने से पहले उसकी कहानी का, उसके क्लाइमेक्स का, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में पता चल जाए।

दोस्तों, फिल्म लुका छुपी से आप सुन रहे थे अखिल और ध्वनि भानुशाली की आवाज में ट्रैक। कुछ फिल्म निर्माता और शोधकर्ता तर्क देते हैं कि स्पॉइलर अनुभव को नीरस नहीं बनाते, बल्कि उसे एक नया रूप देते हैं। फिल्म क्लास ऑनियन के निर्देशक रियान जॉनसन ने अपनी फिल्म रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद स्पॉइलर से भरी इंटरव्यू देकर स्पॉइलर कल्चर को बढ़ावा दिया। वहीं फिल्म निर्माता स्टीवन सोडरबर्ग ने इंडिवर को बताया कि क्लाइमेक्स जाने से दिमाग का ध्यान कहानी से हटकर फिल्म निर्माण की कला पर केंद्रित हो जाता है।

फिल्म जुग जुग जियो से दोस्तों सुन रहे थे आप ये ट्रैक डिज़्बी और श्रेया शर्मा की आवाज में। दोस्तों एक दर्शक बताते हैं कि बदलाव कहानियों को लिखने के तरीके में भी जुड़ा हो सकता है। क्रिस्टोफर नोलन और एरी एस्ट्रा की फिल्म इस बात की अच्छे उदाहरण है कि कैसे जटिल कहानियां पहली बार देखने पर भ्रम पैदा करती है जो बाद में विश्लेषण के दौरान दूर हो जाता है। जब आपको परिणाम पता होता है कि आप खुद को अधिक बुद्धिमान महसूस करते हैं और बेहतर निष्कर्ष निकालते हैं।

दोस्तों सुन रहे थे आप दो बैक टू बैक ट्रैक। सबसे पहले आपने सुना फनी खान से और अभी आप सुन रहे थे दिलवाले से। दोस्तों मनोविज्ञान विशेषज्ञों का मानना है कि अनिश्चित प्रबंधन की बढ़ती आवश्यकता ने सक्रिय रूप से बिगाड़ पैदा करने वाले व्यवहार को बढ़ावा दिया। कैलिफोर्निया में सामाजिक मनोविज्ञान वास्तविक जीवन में इतने सारे सस्पेंस होते हैं कि आप आराम से बैठकर एक ऐसे फिल्म का आनंद लेना चाहते हैं जो सुकून देने वाला हो। कुछ लोगों ने यह सोचकर समझकर निर्णय लेने की बात है, पहले सब कुछ आजमा कर देखने और समझने पर आधारित है। आप अब खुद तय कर सकते हैं कि कोई चीज आपके समय के लायक है या नहीं। इंटरनेट पर कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे सभी बेहतरीन हैं। तो आपको स्पॉयलर्स आपके हिसाब से जरूरी है कि नहीं, ये आप तय करेंगे कि आपको कैसी मूवीज देखनी है, कैसी सीरीज देखनी है। अगर आप कहानी जानने के बाद देखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कहानी जानने के बाद भी देखना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए काफी अच्छी बात है।

फिल्म स्ट्रीट डांसर्स दोस्तों आप सुन रहे थे इंटेंस गैरी संधू और जस्मिन सैंडलर्स की आवाज में ये ट्रैक। और दोस्तों देखते ही देखते हम पहुंच चुके हमारे कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर और लगभग 9 मिनट हमारे हाथ में। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले ट्रैक की तरफ।

फिल्म सत्यम अब जयते टू से दोस्तों आप सुन रहे थे ज़ारा एस खान और देव नेगी की आवाज़ में एक ट्रैक। अब दोस्तों वक्त हो गया है सुनने का हमारे कार्यक्रम का एक आखिरी ट्रैक, और इसी ट्रैक के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर मैं आप लोगों से कुछ दिनों बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अ वेरी हैप्पी संडे। सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो, और मैं जैसा कि आपसे वादा किया कि मिलूंगा जल्द आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ एक नए दिन पर। चलिए सुन लेते हैं कार्यक्रम का आखिरी ट्रैक।

107 FM रेनबो। रंगीन पर्दे की दुनिया से चमकते ख्वाबों की गली तक, ख्वाबों का मसालेदार जायका लाए हम आपके लिए खास तड़का। गॉसिप, ग्लैमर और सिनेमा का मजा हर पल में मिलेगा। कार्यक्रम तीन का तड़का, और तीन का तड़का 3:03:27 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम के साथ। शुरुआत करेंगे एक गीत से, फिल्म का नाम करीब। आपके साथ हूं मैं इस कार्यक्रम में संचिता।

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का 3:09 और अब एक येलो अलर्ट। दक्षिण 24 परगना जिले के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटों के दौरान 10 आज ही के दिन यानी कि 10/5/2026 को दोपहर 2:10 बजे

से हल्के से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। कार्यक्रम है 3 का तड़का, चलिए लगाते हैं। बॉलीवुड के कुछ सनसनीखेज बातों के साथ करण जौहर का मेट गाला डेब्यू चर्चे में इस सप्ताह। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा करण जौहर के मेट गाला डेब्यू को लेकर हो रही है। मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा तैयार विशेष परिधान में करण ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय कला और फैशन की झलक दिखाई। करण ने इस मौके पर शाहरुख खान को अपनी सफलता का बड़ा कारण बताया और कहा कि उनके बिना उनका सफर अधूरा रहा। सोशल मीडिया पर करण का लुक और उनका भावुक बयान बहुत वायरल हो रहा है। फैशन और फिल्मी दुनिया में इस उपस्थिति को भारतीय सिनेमा के लिए खास उपलब्धि माना जा रहा है। जी हाँ, और आगे भी बढ़ेंगे। शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म किंग का रोमांटिक गाना वायरल हो रहा है। किंग के शूटिंग से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो ने इस सप्ताह इंटरनेट पर धूम मचा दी है और इस धूम की वजह क्या है ये हम जरूर बताएंगे, लेकिन तब तक सुनते रहिए एक और गीत फिल्म जब वी मेट से। कार्यक्रम है 3 का तड़का, 3:11 आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ।

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का। आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ और आगे बढ़ेंगे रणवीर सिंह और बेटी दुआ की सेट पर मौजूदगी। किंग की शूटिंग के दौरान एक और खास पल देखने को मिला जब रणवीर सिंह अपनी बेटी दुआ के साथ सेट पर नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दुआ को शूटिंग देखते हुए देखा गया। फैंस ने इस दृश्य को बेहद प्यारा और भावुक बताया। दीपिका पादुकोण पहले भी ये कह चुकी है कि वे चाहती हैं कि उनके बच्चे उनके काम को करीब से समझे। इस खबर ने फिल्मी दुनिया में पारिवारिक रिश्तों और स्टार्स की निजी जिंदगी को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। आमिर खान ने रिधिमा कपूर साइनी की तारीफ की। दादी की शादी की विशेष स्क्रीनिंग में आमिर खान ने रिधिमा कपूर साइनी की अभिनय की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि रिधिमा ने अपने भाई रणबीर कपूर से भी बेहतर अभिनय किया है और ये फिल्म रिधिमा की अभिनय दुनिया में शुरुआती मानी जा रही है। नीतू कपूर भी अपनी बेटी की सफलता को लेकर काफी भावुक नजर आई। कपूर परिवार से जुड़ी ये खबर पूरे सप्ताह मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बनी रही। आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ। फिल्म का नाम कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। आप जुड़े हैं जिस कार्यक्रम में तीन का तड़का संचिता के साथ।

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का। आगे बढ़ते हैं एक और न्यूज चंक के साथ। सलमान खान और संजय दत्त की नई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इस सप्ताह सलमान खान और संजय दत्त की आगामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सेवन डॉग्स की तस्वीरें सामने आई। सेट पर दोनों कलाकारों की मस्ती और दोस्ताना अंदाज ने फैंस को उत्साहित कर दिया। लंबे समय बाद दोनों सितारे एक बड़े प्रोजेक्ट में साथ नजर आने वाले हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हुई और दर्शकों ने इस जोड़ी को फिर से बड़े पर्दे पर देखने की उत्सुकता जताई। सलमान खान की सुपर हीरो फिल्म में करीना कपूर की चर्चा जोरों से हो रही है। बॉलीवुड में सप्ताह खबर रही कि सलमान खान की आगामी सुपर हीरो फिल्म के लिए करीना कपूर खान का नाम सबसे आगे चल रहा है। फिल्म का निर्देशक जो है निर्देशन चर्चित जोड़ी राज और डीके करने वाले हैं। अगर ये जोड़ी फाइनल होती है तो दर्शकों को एक बार फिर बॉडीगार्ड और बजरंगी भाईजान जैसा फ्लेवर जरूर मिलेगा, जैसी हिट केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। और फिल्म को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन फैंस के बीच उत्साह काफी बढ़ चुकी है।

107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का के अंतर्गत अब पेश है कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, जिसे भारत सरकार की एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में हम जानते हैं, जिसका उद्देश्य देश में कम आय वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना है। मोटे तौर पर देश के सबसे निचले 50% लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। इसे सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बाद में आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उसके अधिक आयु के सभी नागरिकों को शामिल करने के लिए वास्तविक जो है विस्तारित किया गया है। कार्यक्रम का उपयोग करने वाले लोग अपने परिवार के डॉक्टर से अपनी प्राथमिक देखभाल सेवाएं प्राप्त करते हैं और जब किसी की अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है तो पीएम जेएवाई विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता वाले लोगों के लिए मुफ्त माध्यमिक जो स्वास्थ्य देखभाल और आप अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले लोगों के लिए तृतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। ये कार्यक्रम भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का हिस्सा है और आय के आधार पर भी लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। बाद में इसी मंत्रालय ने कार्यक्रम के संचालन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नामक संगठन की स्थापना की। ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका वित्तोपन जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 5 करोड़ यानी कि 500 मिलियन लोगों को सेवाएं प्रदान करके ये विश्व का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बन चुका है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के अंतर्गत भारतीय संस्करण ने भारत के प्रत्येक राज्य के लिए 1990 से 2016 तक की प्रमुख बीमारियां और जोखिम कारकों की रिपोर्ट दी गई। इस अध्ययन ने सरकारी स्वास्थ्य नीति में काफी रुचि पैदा की क्योंकि इसने प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों की पहचान कि जिनका जो समाधान है सरकार कर सकती थी। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली जो देखभाल के लिए रोगियों द्वारा किए जाने वाले जेब भुगतान पर निर्भर करती थी। आबादी के एक बड़े हिस्से को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं कर पा रही थी। ये भुगतान कई रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने से रोकते थे। 2018 में भारत सरकार ने बताया कि हर साल जेब से किए जाने वाले चिकित्सा खर्चों के कारण 6 करोड़ से अधिक भारतीय गरीबी में धकेले दिए जा रहे हैं। भारत सरकार ने फरवरी 2018 में भारत के 2018 के केंद्रीय बजट में आयुष्मान भारत योजना को एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल योजना के रूप में पहली बार घोषित किया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने मार्च में इसे मंजूरी दी। अपने 2018 स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत में उसी वर्ष 25 सितंबर को एक बड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन की भी याद दिलाता है। जून 2018 में अस्पतालों के लिए आवेदन पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया में के माध्यम से शुरू किए गए। जुलाई 2018 में आयुष्मान भारत योजना ने लोगों को आधार कार्ड के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की सिफारिश की, लेकिन ये भी कहा कि बिना आधार कार्ड के भी लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया उपलब्ध चालू की गई है। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत परियोजना के कुछ विशेषताओं के बारे में संक्षेप में। 10 करोड़ परिवार या 50 करोड़ भारतीयों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना, सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का कवर
प्रदान करना, अस्पताल या डॉक्टर के कार्यालय के माध्यम से नगद रहित भुगतान और कागज रहित रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करना, लाभों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति गणना के मानदंडों का उपयोग करना, परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सभी पूर्व मौजूदा चिकित्सा स्थितियों योजना के अंतर्गत शामिल है। इसमें 3 दिन की पूर्व अस्पताल में भर्ती और 15 दिन की अस्पताल में भर्ती के बाद भी देखभाल शामिल है, जिसमें नैदानिक देखभाल और दवाओं पर होने वाला खर्च शामिल है और ये योजना पोर्टेबल है। लाभार्थी अपने राज्य के बाहर और देश में कहीं भी किसी भी PMJAY सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आवश्यक प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बीमा आधारित प्रणाली की ओर बदलाव को बढ़ावा दिया गया है। निजी क्षेत्र में तुलना में भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार कम वित्त पोषण और 1990 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय सरकार द्वारा निजी स्वास्थ्य बीमा के बाजार में उदारीकरण और परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य असमानताएं बढ़ी, क्योंकि निजी स्वास्थ्य बीमा मुख्य रूप से आर्थिक रूप से संपन्न समूहों के लिए दुर्लभ है। इस मंडल के माध्यम से राज्य निजी बीमा कर्ताओं को प्रीमियम का भुगतान करेगी, जिससे पात्र व्यक्ति PMJAY योजना में शामिल किसी भी सार्वजनिक या निजी संस्थान में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकेंगे। सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा का विकल्प गरीब व्यक्तियों को अतिरिक्त खर्चों के बिना निजी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने में सक्षम बनाना। आयुष्मान योजना के कारण सरकारी अस्पतालों का राजस्व बढ़ा, मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिली। पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मरीज सरकारी अस्पतालों में जाने से हिचकिचाते थे, अब लोग आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए इन अस्पतालों पर भरोसा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत योजना के कुछ मुख्य बिंदु कुछ इस तरह से हैं। 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का कैशलेस और पेपरलेस इलाज किया जाएगा। 2026 चुनाव परिणामों के बाद इस राज्य में लागू करने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सूचीबद्ध अस्पतालों में गंभीर बीमारियां जैसे हृदरोग, कैंसर का मुफ्त इलाज होगा। मुख्य रूप से 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति गणना यानी कि SECC के आधार पर अब 70 वर्ष के अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग भी इस परियोजना के पात्र होंगे। 2026 में आयुष्मान भारत कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्रता जांचने हेतु आधिकारिक लाभार्थी पोर्टल पर जाएं, अपने आधार कार्ड का उपयोग करके EKYC पूरा करें और अनुमोदन प्राप्त होने पर अपना कार्ड डाउनलोड करें। ये सेवा निशुल्क है और माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए के प्रति परिवार प्रति 5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। अपना नाम, राशन कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर डालकर जांच की जा सकती है। योजना के अंतर्गत ये आते हैं। PMJAY वेबसाइट या लाभार्थी पोर्टल पर जाएं, अपने मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप पात्र हैं तो आधार आधारित EKYC, बायोमेट्रिक्स या OTP का उपयोग करें। आवेदन

पूरा करें और जमा करें। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा सत्यापन के बाद ई कार्ड स्वीकृत हो जाएगा। आज हम बात कर रहे थे परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में।

107 एफएम रेनबो कार्यक्रम है तीन का तड़का, 3:47:03। बॉलीवुड के सनसनीखेज खबरें और साथ में बहुत सारे स्टोरीज और बॉलीवुड न्यूज। सैफ अली खान की वेब सीरीज कर्तव्य का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस सप्ताह कर्तव्य का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें सैफ अली खान एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने कर्तव्य और परिवार के बीच फंसा हुआ है। खास बात यह है कि इस सीरीज को शाहरुख खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शानदार प्रतिक्रिया मिली और दर्शकों ने सैफ के गंभीर अभिनय की जमकर तारीफ भी की। अमीषा पटेल कहो ना प्यार है और बहुत सारी फिल्मों में वो जमकर अभिनय किया उन्होंने। अमीषा पटेल का बॉलीवुड पीआर संस्कृति पर बयान। जी हां, अमीषा पटेल ने इस सप्ताह सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की स्थिति फेक पीआर संस्कृति पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कई युवा अभिनेत्रियां खुद को नंबर वन कहलाने के लिए प्रचार तंत्र का सहारा लेती हैं। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है। कई लोगों ने उनका समर्थन किया तो कुछ ने उन्हें अनावश्यक विवाद बताया। हॉलीवुड नहीं बल्कि बॉलीवुड में स्टारडम और प्रचार के बदलते स्वरूप पर यह खबर लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिलहाल नीतू कपूर का भावुक खुलासा। इस सप्ताह नीतू कपूर का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के लिए अपने समर्पण की बातें साझा की है। उन्होंने बताया कि जब ऋषि कपूर की फिल्में नहीं चलती थी तो वे मंदिर, गुरुद्वारे, यहां तक कि चर्च जाकर प्रार्थना करते थे और व्रत वो रखती थी। और ये बयान सुनकर प्रशंसक जो है भावुक हो गए। कपूर परिवार के प्रति लोगों की जो भावनात्मक जुड़ाव है एक बार फिर देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे एक गीत के साथ। फिल्म का नाम है काइट्स। कार्यक्रम है 3 का तड़का, 3:49 आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ।

107 FM रेनबो पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम तीन का तड़का, 3:55, 5 मिनट का सफर बाकी है। आपके साथ हूं मैं संचिता। सलमान खान के नए लुक की चर्चा निर्माता

दिल राजू की आगामी फिल्म के लिए सलमान खान का नया लुक चर्चे में है। रिपोर्ट्स के अनुसार मशहूर मेकअप आर्टिस्ट जो है प्रीति सिंह इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं और सलमान के लिए अलग अलग लुक तैयार किए जा रही हैं। फैंस को उम्मीद है कि सलमान इस फिल्म में नए अंदाज में नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर अभिनेता के मेक ओवर को लेकर काफी उत्सुक दिखते हैं। दीपिका पादुकोण की मेट गाला वापसी की चर्चा, मेट गाला 2026 में भारतीय सितारों की संभावित जो मौजूदगी को लेकर इस सप्ताह काफी चर्चा है। खबरों के अनुसार दीपिका पादुकोण एक बार फिर इस प्रतिष्ठित जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में नजर आ सकती हैं। फैशन प्रीमियम के बीच इस संभावित लुक को लेकर उत्सुक बड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय कलाकारों की मौजूदगी बॉलीवुड के वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। आलिया भट्ट के पारंपरिक फैशन को चर्चा, मेट गाला से जुड़ी खबरों में आलिया भट्ट का नाम भी खूब सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि वे भारतीय कारीगरी और पारंपरिक फैशन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर सकती हैं। फैशन विशेषज्ञों का मानना है कि आलिया ने पिछले वर्षों में भारतीय डिजाइन्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रियंका चोपड़ा जोनस की बात करते हैं। संभावित उपस्थिति मेट गाला 2026 में प्रियंका चोपड़ा की वापसी की चर्चाएं भी पूरे सप्ताह बनी हुई हैं। प्रियंका पहले भी अपने शानदार फैशन स्टेटमेंट्स के कारण अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोर चुकी हैं। फैंस इस बार भी नए अंदाज का इंतजार कर रहे हैं। कपिल शर्मा की नई फिल्म को लेकर उत्साह, कपिल शर्मा की फिल्म दादी की शादी को लेकर भी इस सप्ताह खूब चर्चा हो रही है। कॉमेडी के लिए मशहूर कपिल शर्मा इस बार पारिवारिक भावनाओं से जुड़े कहानी में नजर आने वाले हैं। दर्शक उनके नए अवतार को देखने के लिए काफी उत्सुक हैं। चलेंगे आखिरी गीत फिल्म जोधा अकबर के साथ और आपसे फिर मिलती हूँ एफएम गोल्ड पर लेकर कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स। तब तक साथ रहिए और सुनते रहिए इस गीत को।

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात, मदर्स डे। जी हाँ, माँ केवल एक शब्द नहीं, जीवन का मधुर संगीत है। उसके आंचल की छाव तले हर दुख भी जैसे प्रीत है। जब पहली बार आंख खुली, ममता का चेहरा सामने था। उसकी लोहड़ी की मीठी धुन में सारा जग जैसे थामे था। खुद भूखी रहकर भी जिसने हमको हर निवाला खिलाया, आंसू अपने छुपा के जिसने होठों पर मुस्कान सजाया। माँ वो दीपक है घर का, जो हर पल जलती रहती है, अपने सपनों को खोकर भी औरों के सपने बुनती है। बच्चों की हर छोटी धड़कन जिसको सबसे पहले सुनती है। ठोकर लगते ही दुनिया को सबसे पहले माँ ही रोती है। वो शिक्षक है, वो रक्षक भी है, जीवन की पहली पाठशाला भी है। आगे बढ़ेंगे गीत के साथ। कार्यक्रम है यादों की बारात, छायालोक के अंतर्गत।

107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात। यादों की बारात में हम याद करते हैं स्क्रीन मदर्स को, यानी कि पर्दे पर जो माएं हैं। बॉलीवुड में जो फेमस पर्दे स्क्रीन मदर्स हैं, जो पर्दे पर माओं की भूमिका निभाने वाली, मदर इंडिया की राधा नरगिस जी भारतीय सिनेमा में मां के सबसे अमर रूपों में से एक। राधा का चरित्र गरीबी, संघर्ष, सामाजिक दबावों के बीच राधा अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और नैतिकता से कभी समझौता नहीं करती। खेतों में मेहनत करने वाली ये मां अपने बेटे बिरजू के गलत रास्ते पर जाने पर उसे रोकने के लिए कठोर निर्णय ले लेती है। ये किरदार भारतीय नारी शक्ति, त्याग, आदर्श, मातृत्व का प्रतीक बन गया। नरगिस ने अभिनय को आज भी भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में ये गिना जाता है और ये फिल्म मातृत्व की मिसाल मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। कार्यक्रम है यादों की बारात छायालोक के अंतर्गत। 7:15 आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ।

107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात। यादों की बारात में हम याद कर रहे हैं आज मदर्स डे के उपलक्ष में कुछ स्क्रीन मदर्स को, यानी कि पर्दे पर जो माएं भूमिका निभाती आ रही हैं। दीवार की माँ निरुपा रॉय, मेरे पास माँ है संवाद को अमर बनाने वाली। ये माँ भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध स्क्रीन मदर्स में गिनी जाती हैं। निरुपा रॉय ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो गरीबी, अपमान और संघर्ष के बीच अपने बेटों को संस्कार देती है। निरुपा रॉय, एक बेटा अपराध की राह चुनता है जबकि दूसरा ईमानदारी का। मां दोनों के बीच नैतिक संतुलन बनाकर खड़ी रहती है। इस किरदार ने, इस मां के किरदार ने 70 के दशक में मां की छवि को बेहद भावनात्मक और आदर्श रूप दिया। आज भी अगर आप दीवार देखते हैं, चरित्र त्याग और ममता का प्रतीक माना जाता है दीवार की मां निरुपा रॉय को। आगे बढ़ेंगे एक गीत के साथ।

0: গানে বাজুক মনের রেডিও, শুনছো 107 FM রেইনবো।
1: सात बजकर 33 मिनट 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात। स्क्रीन मदर्स यानी कि पर्दे पर माओं की भूमिका निभाने वाली करण अर्जुन की दुर्गा सिंह, राखी गुलजार, मेरे करण अर्जुन आएंगे संवाद हिंदी सिनेमा का ऐतिहासिक हिस्सा बन चुका है। राखी गुलजार ने इस फिल्म में ऐसी माँ की भूमिका निभाई जो अपने बेटों की मौत के बाद भी विश्वास नहीं खोती, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध उसकी आस्था उसे मजबूत बनाए रखती है। मां के अटूट विश्वास और प्रेम को फिल्म में पुनर्जन्म की कहानी से जोड़ा गया। ये किरदार दर्शकों के दिलों में इसलिए बस गया क्योंकि इसमें मां की श्रद्धा है और धैर्य, भावनात्मक शक्ति को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। कार्यक्रम यादों की बारात 7:34 मिनट

107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात। बात करते हैं स्क्रीन मदर्स की। नंदिनी रायचंद, कुछ याद आया, कभी खुशी कभी गम। नंदिनी रायचंद एक ऐसी माँ है जो अपने बेटे से भावनात्मक रूप से

गहराई से जुड़ी रहती है। जया बच्चन ने बिना अधिक संवादों के केवल भावनाओं और आंखों के माध्यम से मातृत्व को जीवंत किया। बेटे के घर छोड़ने का दर्द,

जी हाँ, बेटे का घर छोड़ने का दर्द ही नहीं बल्कि आंखों के माध्यम से मातृत्व को जीवंत किया। बेटे के घर को जब छोड़ा, दर्द और वर्षों बाद उसके लौटने की उम्मीद दर्शकों को भावुक कर देती है। फिल्म में माँ और बेटे के रिश्ते को संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है।

7:48 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात। बात कर रहे हैं हम पर्दे पर जो माए बनी थी उनके बारे में। फिल्म माया अवस्थी तारे जमीन पर तस्का चोपड़ा ने इस कैरेक्टर को प्ले किया। माया अवस्थी एक संवेदनशील माँ है जो अपने बेटे ईशान की तकलीफ को महसूस करती है, भले ही दुनिया उसे समझ न पाए। डिसलेक्सिया जैसी समस्या से जूझते बच्चों के दर्द को माँ सबसे पहले महसूस करती है। तस्का चोपड़ा ने बेहद सहज अभिनय से एक चिंतित और दयालु माँ का रूप प्रस्तुत किया। बेटे को हॉस्टल भेजने के बाद उसकी तड़प और अपराध बोध दर्शकों के दिल को छू जाता है। यह चरित्र हर उस मां का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने बच्चे के लिए हर पल चिंतित रहता है। कार्यक्रम है यादों की बारात। 7:50 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात। मदर्स डे के अवसर पर स्क्रीन मदर्स की कहानियां। बात करते हैं शशि गोडबोले की। इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी शशि गोडबोले केवल एक गृहिणी नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए समर्पित एक मां भी है। बच्चों और पति द्वारा अंग्रेजी ना बोल पाने पर मजाक उड़ाए जाने के बावजूद वो आत्मसम्मान बनाए रखती है। श्रीदेवी ने एक ऐसी मां का किरदार निभाया जो अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़ी रहती है और अत्यंत आत्मविश्वास हासिल करती है। फिल्म ने यह संदेश दिया कि मां केवल त्याग की मूर्ति नहीं बल्कि सम्मान की भी हकदार है। ये आधुनिक भारतीय मां की आत्मनिर्भर छवि को दर्शाने वाला एक यादगार चरित्र कह सकते हैं। कार्यक्रम है यादों की बारात 107 FM रेनबो पर। आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ। 7:56

हुजूर इस तरह भीना इकरा के चलिए। मासूम फिल्म से भूपेंद्र की आवाज और कार्यक्रम है यादों की बारात। यादों के फलसफे में आज हम पेश कर रहे हैं माओं की भूमिका, स्क्रीन मदर्स। आगे बढ़ेंगे जिस

मालिनी, पूजा मल्होत्रा एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देती है, लेकिन बुढ़ापे में वही बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। हेमा मालिनी ने इस किरदार में माँ के दर्द, धैर्य और स्नेह को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से निभाया। फिल्म ने परिवार और माता पिता के सम्मान का महत्वपूर्ण संदेश दिया। पूजा का चरित्र भारतीय परिवारों में मां की निस्वार्थ भूमिका और उसके संघर्षों को उजागर करता है। मदर्स डे पर यह किरदार विशेष रूप से याद किया जाता है। कार्यक्रम है यादों की बारात 107 FM रेनबो पर। आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ। 8:08 26 सेकंड।

107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात 8:15 कार्यक्रम है यादों की बारात और हम बात कर रहे हैं स्क्रीन मदर्स की मदर्स डे के याद में हम साथ साथ हैं कि ममता यानी कि रीमा लागू हिंदी फिल्मों की सबसे प्रिय माताओं में से गिनी जाती हैं और इस फिल्म में उन्होंने एक आदर्श संयुक्त परिवार की मां की भूमिका निभाई। परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखने वाली ये मां अपने बच्चों के बीच प्रेम और संस्कार बनाए रखती है। उनके किरदार में अपनापन, सादगी और ममता साफ दिखाई देती है। अगर आपने रीमा लागू को देखा फिल्म में हम साथ साथ हैं, तो एक यौथ परिवार फिल्म में मां को परिवार की भावनात्मक धुरी के रूप में दिखाया गया है। भारतीय पारिवारिक मूल्यों को प्रस्तुत करने में ये चरित्र अत्यंत लोकप्रिय रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीमा लागू को। रीमा लागू की फिल्म हम साथ साथ हैं में से कार्यक्रम है यादों की बारात

8:27 और 34 सेकंड 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात, यादों की बारात संचिता के साथ। और हम बात कर रहे हैं आज मदर्स डे के अवसर पर स्क्रीन मदर्स की, यानी पर्दे पर जिन माओं ने अपनी भूमिका निभाते हुए लोगों के दिल में उतर गई, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की लाजवंती, यानी फरीदा जलाल। लाजवंती एक ऐसी माँ है जो अपनी बेटी सिमरन की भावनाओं को समझती है, लेकिन पारिवारिक परंपराओं के कारण खुलकर उसका साथ नहीं दे पाती। फरीदा जलाल ने उस भूमिका में माँ की संवेदनशीलता और मजबूरी दोनों को खूबसूरती से दर्शाया। बेटी के सपनों को समझने वाली ये माँ अत्यंत उसके प्रेम का समर्थन करती है। भारतीय समाज में माँ की भावनात्मक भूमिका और परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को ये चरित्र जो है प्रभावी ढंग से सामने लाता है। मैं बात कर रही थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लाजवंती यानी फरीदा जलाल की। कार्यक्रम है यादों की बारात। आठ बजकर 29 मिनट आप जुड़े हुए कार्यक्रम यादों की बारात में संचिता के साथ।

8:34 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात। यादों की बारात में आज आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं स्क्रीन मदर्स के बारे में, वो भूमिकाएं जो अदाकाराओं ने निभाए स्क्रीन पर माँ के रूप में। कल हो ना हो कि जेनिफर कपूर, जया बच्चन ने रोल निभाया। जेनिफर कपूर एक अकेली माँ है जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है और परिवार को संभालती है। जेनिफर ने इस किरदार में गरिमा और स्नेह का एक बहुत ही सुंदर संतुलन दिखाया। ये अपने बेटे बेटी की खुशियों के लिए हर कठिनाई झेलती है। फिल्म में माँ का किरदार परिवार के भावनात्मक आधार के रूप में उभरता है। उनकी सरलता और स्नेह दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये जो चरित्र है एक आधुनिक शहरी माँ की जिम्मेदारियों को दर्शाता है। कार्यक्रम है यादों की बारात।

बात करते हैं सीक्रेट सुपरस्टार की नजमा की। महरवीज नजमा एक साहसी माँ है जो घरेलू हिंसा सहने के बावजूद अपनी बेटी के सपनों को टूटने नहीं देती। महरवीज ने इस भूमिका को बेहद भावुक और वास्तविक बनाया। बेटी इंसिया को गायिका बनने के लिए माँ हर परिस्थिति में उसका साथ देती है। बात करें सीक्रेट सुपरस्टार की।

107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात 8:45। कभी कभी फिल्म से इस गीत को हम सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे थे मेहर विज की। यादों की बारात में स्क्रीन मदर्स की बात कर रहे हैं आज हम। माही विज ने भूमिका को बेहद ही भावुक तरीके से, वास्तविक तरीके से निभाया, अपनी बेटी के सपने को पूरा किया। मां को केवल त्याग की मूर्ति नहीं बल्कि एक मजबूत प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है स्क्रीन पर। यह चरित्र आज भी उन माताओं को प्रतिनिधित्व करता है जो बच्चों के सपनों के लिए हर मुश्किल का सामना करती है। आगे बढ़ेंगे फिर से फरीदा जलाल को लेकर। फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी की मां कौशल्या। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने एक स्नेहमयी मां की भूमिका निभाई जो अपने बेटे राजा को सही मार्ग दिखाती है। साधारण जीवन जीने वाली ये मां अपने बेटे की खुशियों के लिए चिंतित रहती है। बेटे और बहू के रिश्ते में आने वाले संघर्षों के बीच वह परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती है। उनका किरदार भारतीय ग्रामीण मां की सादगी और भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। मां के रूप में उनकी जो सिंप्लिसिटी, सहजता दर्शकों को बेहद पसंद आई। हम बात कर रहे थे राजा हिंदुस्तानी की मां कौशल्या के बारे में। आठ बजकर 46 मिनट कार्यक्रम यादों की बारात।

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात के साथ है आप। 8:53, 7 मिनट का सफर बाकी है। बात कर लेंगे दो और माओं के बारे में, स्क्रीन मदर्स। सोनिया मेहरा, जी हाँ, रेखा ने इस किरदार को निभाया कोई मिल गया फिल्म में। अपने मानसिक रूप से कमजोर बेटे रोहित की देखभाल पूरे समर्पण से करती है, और रेखा ने इस माँ की चिंता, ममता, सुरक्षा भावना को बहुत ही ज्यादा संवेदनशील ढंग से निभाया। एक अच्छी अदाकारा तो वो है ही, वो अपने बेटे को समाज की कठोरता से बचाने का प्रयास करती है। फिल्म में माँ बेटे का रिश्ता बहुत भावुक और इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। ये चरित्र जो है सोनिया मेहरा का दिखाता है कि माँ अपने बच्चे की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बनती है। आगे अगर बढ़ना है तो किरण खेर की भी बात करते हैं, फना फिल्म से जूनी की माँ। जी हाँ, किरण खेर ने फिल्म में एक जीवंत और प्यार करने वाली माँ की भूमिका निभाई। वो अपनी दृष्टिहीन बेटी जूनी की हर कदम पर हिम्मत बढ़ाती है। उनकी बातचीत में हास्य, अपनापन, भावनात्मक गहराई दिखाई देती है। बेटी की सुरक्षा और खुशियों के लिए चिंतित ये माँ आधुनिक सोच और भारतीय संस्कारों का सुंदर एक मिश्रण प्रस्तुत करती है। ये जो चरित्र है जूनी की माँ का, दर्शकों को अपनी गर्मजोशी और स्वाभाविक अभिनय के कारण बेहद प्रिय लगा। कार्यक्रम है यादों की बारात, जिसके साथ आप बने हुए थे। 8:55, 40 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके साथ थी मैं संचिता। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी कार्यक्रम में। तब तक सुनते रहिए इस गीत को और अगले कार्यक्रम के साथ भी रहिए।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदिया जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

तो आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।